0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: आज के सबक का कलीदी जुमला है, कौन सा सबसे मजेदार है?
4: どれが一番美味しいですか?
3: अगर आप इसे याद कर लें, तो इसे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजों में से सबसे बेहतर के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं।
5: दोरे के मायनी है कौन सा? इसके बाद का गा जाहिर करता है कि दोरे जुमले का मौजू है। इचिबान का मतलब है अव्वल या सबसे ज्यादा, और ओइशी यानी मजेदार। चुनांचे इचिबान ओइशी का मतलब हुआ सबसे मजेदार, और आखिर में देस का लगाते हुए उठान के साथ अदायगी के जरिए जुमला सवालिया हो जाता है। आज का नुक्ता, मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर की निशानदेही करने के लिए इच्चीबान का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जायके में अव्वल या सबसे मज़ेदार के लिए मज़ेदार यानी ओइशी से पहले इच्चीबान लगाकर इच्चीबान ओइशी बनाया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर के मुतालिक सवाल करने के लिए दोरे का इच्चीबान पूछा जाएगा। इसमें दोरे के मायने है कौन सा,
3: यानी खाने पीने की कुछ चीज़ें सामने हों और उनमें से सबसे मज़ेदार चीज़ कौन सी है पूछना हो तो दोरे का इच्चीबान ओइशी दिसका पूछेंगे, ठीक है ना?
5: जी बिल्कुल ठीक।
3: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
6: ओइशी दिस, इच्चीबान ओइशी दिस, दोरे का इच्चीबान ओइशी दिसका।
3: जी सामईन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
5: अब सबसे बेहतर के इंतखाब से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक ग्राहक जापानी मिठाइयों की दुकान में है और बेहतरीन मिठाई का इंतखाब करना चाहता है।
4: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
5: अब इस मकालमे की तशरीह।
4: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
3: कौन सी सबसे मकबूल है?
5: निंकी गा अरिमासु यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है, और आरिमस फेल आरू यानी होना की मस शक्ल है।
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
3: मेरी तजवीज़ ये है।
5: कोरे यानी ये, और ओसुसुमे यानी तजवीज़ या सिफारिश।
3: तो सुनिए और दोहराइए।
6: निंकी गा आरिमस, इचिबान निंकी गा आरिमस, どれが一番人気がありますか?
5: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फर्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
6: यासुई, यासुई।
5: तो सामीन कोशिश करें।
7: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
5: अब फर्ज करें कि आप किसी रेस्तोरान में हैं जहां बहुत सी अकसाम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
6: ओतोकुना, ओतोकुना।
5: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो तो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय दिस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है?
7: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
5: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है
8: गोचुमोन वा।
5: गोचुमोन वा के मायने हैं आप क्या लेंगे। रेस्तोरान या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। चुमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो ग्राहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। यानी गो चुमोन वा का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़ेह है, इसलिए हज़्फ कर दिया गया है।
3: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
9: गो चुमोन वा,
10: गो चुमोन वा,
9: गो चुमोन वा।
5: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।

0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカーネケショキンカイトケマシュロンカカーナル。アシカモズラーメンヘ。
2: ラーメンヌードルズディッシュヘ。グンデウエアテキバリクパティオンエヌードルズコ。ガランパニメオバルカーピアレメスープケサーピシキアジャタヘ。イスメウパセウブレウエンデ、ゴスケパーチェ、ヤサブジュージャシトピンズダリジャティヘ。ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है, ताहम जापान में मुनफरिद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
1: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
2: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक یہ صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں،
1: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں۔
2: جی ہاں، باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں۔ مثلا اب پنیر اور گاڑی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں وہاں کے مخصوص انداز کے رامن بھی ہیں۔ مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला कवानो से सुने समाचार। नेपाल और चीन की सीमा के पास आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास आपदा के एक सप्ताह बाद भी जारी हैं। नेपाल में आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1,050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3,900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर 16 लोगों की मौत हो गई है और 540 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित कई समुदायों में अब भी बिजली और संचार व्यवस्था नहीं है। उनका यह भी कहना है कि बाढ़ से सड़कें और पुल टूट जाने के कारण लोग फंसे हुए हैं। भारी मशीनों की कमी के कारण कीचड़ हटाने के काम में बाधा आ रही है। वहीं हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल सरकार तलाश और बचाव अभियान के लिए सेना और पुलिस सहित 20,000 कर्मियों को तैनात कर रही है। मध्यवर्ती नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में स्थित पन बिजलीकर संयंत्रों में 630 से अधिक श्रमिक इमारतों या सुरंगों में फंसे हुए हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूरे सप्ताह बारिश जारी रहने का अनुमान है। बचाव कर्मी नदियों में बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं के खतरे का सामना कर रहे हैं। वर्षा अग्र के साथ आए निम्न दाब तंत्र के कारण उत्तरी जापान में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम अधिकारियों ने आओमोरी प्रीफेक्चर में भूस्खलन और बारिश की चेतावनी दी है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि आओमोरी में वर्षा के लगातार बनते घने बादलों से भूस्खलन या बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार तोहोकू क्षेत्र में बृहस्पतिवार तक गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तोहोकू में बृहस्पतिवार सुबह तक 24 घंटों में 100 मिलीमीटर तक और होक्काइडो में 80 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने का आग्रह किया है। एजेंसी का यह भी कहना है कि बृहस्पतिवार से पश्चिम से पूर्वी जापान तक के व्यापक क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। बृहस्पतिवार सुबह से शुक्रवार सुबह तक के 24 घंटों में शिकोकू में 200 मिलीमीटर, तोकाई, किंकी, दक्षिणी क्यूशु और अमामी में 150 मिलीमीटर तक, होकुरिकु में 120 मिलीमीटर और कांतो, कोशिनेत्सु तथा चुगोकु क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अतिवृष्टि की संभावना है और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक अमेरिका के एशविल शहर में समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद जोखिमों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने कोई संयुक्त बयान पारित नहीं किया। जापानी अधिकारियों ने बैठक से इतर अमरीकी समकक्षों के साथ येन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। G20 बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी ने कहा कि जापानी अधिकारी बंधपत्र बाजार के रुझानों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब जापान के प्रमुख 10 वर्षीय बंधपत्र पर लाभ लगभग 30 वर्षों में पहली बार 3% से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने लाभ के विशिष्ट स्तरों के बारे में बात करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर उएदा काजुओ ने भी खातायामा के साथ पत्रकारों से बात की। उन्होंने संकेत दिया कि जापानी बंधपत्र लाभ में वृद्धि वैश्विक रुझानों से जुड़ी है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष और वित्तीय नीति पर बाजार के दृष्टिकोण के कारण बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का हवाला दिया। उएदा ने कहा कि वित्तीय अधिकारी अर्थव्यवस्था पर बंधपत्र के बढ़ते लाभ के प्रभाव पर नजर रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाला एक घोषणा पत्र जारी किया। शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में मंगलवार को समाप्त हुआ। चीन और रूस के नेतृत्व वाले इस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में ईरान सहित 10 सदस्य हैं। बिश्केक घोषणा पत्र में नेताओं ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और राजनीतिक व राजनयिक माध्यमों से विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि सदस्य देश द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को बरकरार रखेंगे और इतिहास को बदलने के प्रयासों का विरोध करेंगे, जो संभवतः जापान के संदर्भ में कहा गया है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहयोगी देशों के साथ एक विस्तारित बैठक में भाग लिया। कथित रूप से अमेरिका की आलोचना करते हुए शी ने कहा कि प्रमुख देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने और कानून के शासन का सम्मान करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रूस ने घोषणा की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि रूस इस कठिन समय में ईरान को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। पेजेश्कियान के हवाले से कहा गया कि उन्हें विश्वास है कि ईरान उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों और अमरीका का सामना कर सकता है। सोनी ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखा और 34 अन्य कंपनियों ने बौद्धिक संपदा की कथित चोरी के आरोप में एआई डेवलपर एंथ्रोपिक के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि एंथ्रोपिक ने गैरकानूनी रूप से बड़ी मात्रा में कॉपीराइट वाले संगीत और गीतों का उपयोग अपने क्लॉड एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। वादी पक्ष, जिसमें वार्नर म्यूजिक ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखाएं भी शामिल है, उसने प्रत्येक कृति के लिए $1.5 लाख तक के मुआवजे की मांग की है। उसने दावा किया है कि एंथ्रोपिक की गतिविधियों से संगीत प्रकाशकों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले गीतकारों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। एंथ्रोपिक ने संगीत कंपनियों के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगा।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, नेपाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।